हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 पर। आप जुड़े हैं हमारे प्रातःकालीन सभा में। आइए लेते हैं एक संक्षिप्त जानकारी उन कार्यक्रमों की जो अब से लेकर दिन भर तक एफएम रेनबो पर आएंगे आपकी जानिब।

आपसे कुछ देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके ठीक कुछ देर में यानी 6:02 से और सुबह के 7 बजे तक आप जुड़ेंगे गौतम गौड़ के साथ कार्यक्रम सुप्रभात में। इसके ठीक बाद आप जुड़ेंगे रेणु भट्ट के साथ पर। रेणु भट्ट ही लेकर आएंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। इसमें आज आप सुनेंगे एक जानकारी मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव ये कार्यक्रम रहेगा। सूचना प्रदेश कार्यक्रम के बाद एक बार पुनः हम आपको लिए चलेंगे हिंदी समाचारों के लिए सुबह के 8 बजे। 8:02 पर समाचारों के बाद पुनः गौतम गौड़ होंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ। रेणु भट्ट लेकर आएंगी दिल के तराने गाने नए पुराने। इस कार्यक्रम में आप ताजा तरीन बॉलीवुड के गाने सुनेंगे नॉनस्टॉप। विदुषी वत्स इस कार्यक्रम के बाद लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर सुबह 10:02 से। ज्योतिका सिंह के साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स में। इसमें आप बॉलीवुड के गाने और सूचनाएं सुनेंगे सुबह के 11:02 से।

पर आधारित हमारी अन्य दैनिक प्रस्तुति प्ले इट कूल। इसके बाद होंगे हिंदी में समाचार दोपहर के 1 बजे। ठीक समाचारों के बाद ज्योतिका सिंह ही लेकर आएंगी रेनबो हेल्पलाइन। इसमें आज आप सुनेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन अ बिगिनर्स रोड मैप फॉर स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट पर हमारा कार्यक्रम। इसमें आमंत्रित अतिथि होंगे सुरभि यादव, जो कि यूपीएससी सीएससी 2025 की रैंक 14 होल्डर हैं, और इसके अलावा होंगे उत्कर्ष, यूपीएससी सीएससी 2025 के ही 32वें रैंक के उम्मीदवार। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुनेंगे अब से लेकर दोपहर और शाम तक। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
2: Have you heard? Census 2027 house listing operation has begun in Nagaland. These are informations to be collected.
3: Basic household amenities such as drinking water, LPG, electricity, sanitation and other essential facilities.
2: When the census officials visit your home, kindly provide accurate information and extend your full cooperation.
3: Your cooperation matters. Our census, our development.

0: वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
7: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force, FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counter-Terrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia Security Dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cyber-security, emerging technologies, defense industry, maritime security and space. Both leaders also agreed to explore greater cooperation in the cyber domain through policy dialogue, capacity building and exchange of expertise and best practices. Shrindipan Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
6: Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values and a common vision for the future. Describing India as a mother of democracy, the Prime Minister said New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
8: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
6: The Prime Minister noted that shared historical experiences, common developmental challenges and the aspirations of the people have brought India and Indonesia closer as strategic partners. Highlighting India's development journey and the synergies between the vision of Viksit Bharat 2047 and Golden Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045, PM Modi called for deeper collaboration in trade, investment, connectivity, food and energy security, digital public infrastructure and emerging technologies.
8: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
6: Prime Minister Modi will visit the iconic Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President today. The visit underscores the deep cultural and civilizational ties that have connected India and Indonesia for over 1,000 years. Built in the 9th century, Prambanan is Indonesia's largest Hindu temple complex and one of Southeast Asia's finest architectural masterpieces. Originally comprising 240 large and small temples dedicated to Brahma, Vishnu and Shiva, the complex stands as a remarkable testament to the spread of Indian cultural influence across the region. Its magnificent stone reliefs depict scenes from the Ramayana, reflecting how Indian epics crossed the seas and became an integral part of Javanese culture. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both countries. He will also address a large gathering of the Indian diaspora and constitute a strong pillar of the India-Australia relationship. Our correspondent has filed this report.
9: The bilateral discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese are set to advance cooperation across several key domains. The economic engine of this relationship is accelerating at an unprecedented pace, with two-way trades in goods and services already crossing $33 billion in 2025. The ambition to reach $100 billion by 2030 is now a tangible objective. The India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, providing duty-free access for all Indian exports since January 2026, has catalyzed massive capital flows. Beyond traditional trade, the partnership is now defined by digital-first investments, such as AirTrunk's $30 billion commitment to AI-ready data centers in India. Simultaneously, the $4.5 billion Project Ceres fertilizer plant exemplifies Make in India, Make in Australia synergy, with Indian industrial expertise providing the modular backbone for Australian production. Defense and security cooperation has rapidly evolved into a primary pillar of the partnership. Following the second defense ministers' dialogue in New Delhi on June 1st of 2026, the two nations continue to deepen industrial integration and maritime security. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne, Australia.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Prime Minister's Office, PMO, held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra, at the Seva Tirth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. He emphasized that ensuring adequate availability of drinking water in vulnerable districts must be a top priority and directed optimal reservoir water utilization and judicious use of available water. We have more from a correspondent.
10: During the meeting, officials of the India Meteorological Department presented the overall rainfall situation in June and July. The Director General of the Met Department updated on the status of monsoon coverage in the country and the possible impact of El Nino. He informed that weak to moderate El Nino is expected in July and August. Secretary Agriculture made a detailed presentation on the preparedness for possible impact of El Nino during the Kharif season. He underlined that weekly meetings of Crop Weather Watch Group along with states are being convened to enable timely decision-making and contingency response. He noted that district agriculture contingency plans have been updated for 262 vulnerable districts and campaigns for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Kisan Credit Card coverage in vulnerable states have also been initiated. During the meeting, the Department of Animal Husbandry and Dairying was asked to assess the availability of dry fodder, green fodder and cattle feed at both macro and micro level. Department of Drinking Water and Sanitation informed that they are continuously monitoring and the situation as on date is stable. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
6: The Enforcement Directorate ED has conducted searches at five premises in and around Kolkata in connection with alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money and routing of suspected funds through certain bank accounts of the All India Trinamool Congress, AITC. The searches were carried out at the premises linked to the private firm Carewell Group of companies operating in the aviation sector, its directors and one purported electoral trust. According to the ED's preliminary investigation, more than 150 crore rupees were routed through aviation and travel companies for suspicious purposes. The US military has launched new strikes against Iran hours after three merchant ships were struck in the Strait of Hormuz. In a statement, U.S. Central Command said that American forces have launched strikes to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. Iran's Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi said that the new attacks by the U.S. are a violation of the agreement. Moreover, United States has also revoked a license that had authorized the sale of Iranian oil as part of the interim deal to end the fighting between the two countries. On to sports and football, Argentina and Switzerland have stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup we have a report. Switzerland defeated Colombia 4-3 in the penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. Colombia faltered when Davinson Sanchez smashed his spot kick against the bar and Cucho Hernandez had his effort saved by goalkeeper Gregor Kobel before Ruben Varga scored to book a quarterfinal date with holders Argentina. The two sides were tied after extra time with no goals. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
11: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
3: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in Focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes the end of football's superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel The Sun Also Rises on Bull Runs Turn 100. While the Indian Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
11: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: FM Dragon Band.
1: 103 MHz.
0: News, music, and entertainment.
1: FM Dragon Band.
0: FM 103 MHz.
2: 11 बजे ह्वालुके कोहिमा टाउन लगा ट्राफिक अपडेट इनिका निडिया से इटु आकाशवाणी कोहिमा मनखलापरा लेकिना पीएचक्यू जंक्शन नॉर्थ बाउंड इटिया कारणे भारी ट्राफिक असे किंतु साउथ बाउंड ते हल्का असे जुदि दूसरा रास्ता होले ओल्ड मिनिस्टर्स हिल परा जेल कॉलोनी पीएचक्यू जंक्शन पर लेकिना मेजर जंक्शन इटिया कारणे नॉर्थ आरो साउथ बाउंड दुइटा भी हल्का असे इतिया कारणे टीसीपी गेट राजु पॉइंटे नॉर्थ आरो साउथ दुइटा देबी मॉडरेट ट्राफिक माने हल्का भी नहय बेसि भारी भी नहय एनेका ट्राफिक दिखाई दे असे जुदि दुसरा रास्ता होले बॉक्स कने कटिंग एनएचए के प्रा सेंसस पॉइंट नहले बा फुलबारी खचिजी ग्राउंड पर राजु पॉइंट इतिया राजु पॉइंट पर लुइकिना सेंसस पॉइंट नॉर्थ बाउंड ते मॉडरेट असे আকু সাউথ বাউন্ড হইলে হালকা ট্রাফিক আছে দুসরা রাস্তা হইলে সেন্সাস পয়েন্ট পর এনএচকে আর এটা হাইস্কুল জংশন পর সেন্সাস পয়েন্ট আর এনএচকে জংশন পর সেন্সাস পয়েন্ট নর্থ সাউথ দুইটা দেবী হালকা ট্রাফিক আছে এটা থাকি সে সময় 11 বাজে লাগা ট্রাফিক আপডেট সময় 11 বাজে আদাতে আকু লই কিনে আইব আপনার খানকে ট্রাফিক আপডেট এটা নিউজ হেডলাইন্স Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministers to work with state on preparedness measures. Enforcement Directorate conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strike against Iran after attacks on vessel

0: Soft Swagger Health Center stay BP laga free check up treatment aro kal phal thakibo laga motop dise BP laga kumba sawal thakile toll free number 1-800-116-6660 call koribi
1: BP haribo desh jitibo
2: kuchu jankari MTEP bar dise
3: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
4: FM Tracker Band
5: 103 MHz
4: News, music and entertainment
5: FM
4: 103 MHz
6: Good morning listeners, C2 Akashwani Kohima FM Tracker Band 103 MHz Proprium program hone se aritya hone hobo Hindi film gaan program SMS request that is apna loke pasand kore Hindi film gaan program apni kan ka pasandita gana aji bajai dibo to apni likhi kena pathao pare itu gana karone number ase 9436805333 ako ekbar koi diye ase 9436805333 aur likhibo kane code ase fm space h well likhi kena pathao tum de film la naam tiktok likhi kena pathabi aur gana la title jani ase ko dibi tiktok likhi kena pathabi अपने कोड पर लिखे होंगे अपने नाम अपने कौन के डेडिकेट करो लोग में से तो कमेंट टिकटॉक लिखेंगे ना पता है दिल्ली बिसी बाल कोई ना जन आइडिया से तो आज जो कप अपने हम सब के वेलकम करिए से स्वागत करिए से नमस्ते और सलाम कोई ना जन आइडिया से प्रोग्राम पुनाते हुनाइडिया हो आपने क्या कम मैसेज रुकी थे करने दे कुनाल गंजावाला और विचार शर्मा लगावास थे फिल्म से सिंगम गीत लिखे हुए से स्वानंद किरकिरे और म्यूजिक दे रहे

Well, listeners kan tinjam lirik yang apa saja itu Abhijit atau Hitendra Das atau Ramesh Patu. Apa yang tinjam lagu na lirik yang apa saja, kini itu kalau yang tunai itu film tunai itu kalau apa yang dusra lirik yang apa saja ni, kalau mana itu mau bisa risi panai itu kalau itu nathaga kalau mulai bisa itu kalau dusra film pun lirik yang apa saja. Kini dusra itu aku lirik yang apa saja nasi itu. पड़ा सुनीता बसनुटी मूवी लगना मजे क्या यही प्यार है गाना मेरी तरह तुम भी कोई ना ये तो गाना तो बजाई देवी को ऐसे आरता है तो डेडिकेट कोई दिया से आप सरजी एंड ऑल फ्रेंड्स और मैं कोई ना आई पुंसी से अपने किमान टाइम ते फ्री हो गए कोई ना लिखिया से वेल थैंक यू सो मच सुनीता अपनी पुंछी जा तो बिशी बाहर लगी से तो इतना मैं अपनी माया गाना तो बजाई दी वो तो निगल जो कुछ भी वेल लिसनर्स कन इतना होने वाले के बबल सुपीरियर और आपके यंग क्लाउड्स थे फिल्म से क्या यही प्यार है

चंद्र तुम्हें सभी जन कर बिन लंग पर टाइम में कहाँ लिखी है ना कुछ ऐसे और टाइम में वैसे कल हो ना हो फिल्म पर हर घड़ी बदल रही है इतु कहना तो बजे दिन को ऐसे और टाइम को ना हनुमान मन से को अगले टाइम मही ना कुछ ऐसे तो वेल थैंक यू सो मच चंद्र तुम्हें अपने मन ये कहना तो बजे दिन तो लिसनर्स का नीचे होने वो सुनो निगम लगा वास्ते फिल्म में से कल हो ना हो और उम्र बार बजे 30 मिनट वालों के अपने कहने होने वो न्यूज हेडलाइंस तो आप अपना लोग पसंद गाना कुरिया गाना प्रोग्राम तो आपको कंटिन्यू कुरिया हो।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं एक ऐसा विषय जो सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि जिंदगी में एक नई दिशा भी दे। और आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी की प्रिपरेशन, अ बिगिनर्स रोड मैप फॉर स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, यूपीएससी ये कुछ ही अक्षरों का ये जो खेल है, ये नाम लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सफर की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, कितनी बुक्स काफी हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और सबसे जरूरी, इतने लंबे सफर में मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसे मेहमान जिन्होंने सिर्फ यूपीएससी का सपना देखा ही नहीं बल्कि उसे अपनी मेहनत और लगन से सच भी कर दिखाया। हमारे साथ हैं सुरभि यादव, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में ऑल इंडिया रैंक 14, जी हाँ 1414 हासिल की है। और उनके साथ हैं उत्कर्ष, जिन्होंने इसी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 32 प्राप्त की है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में।
2: थैंक यू सो मच मैम।
3: थैंक यू मैम।
1: कैसा लग रहा है आपको शो में आके? हाउ एक्साइटेड आर यू?
3: वेरी एक्साइटेड टू बी हियर।
1: ग्रेट। और आप सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके, जी हमें आप ही से बात कर रही हूँ, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पायरेंट हैं, और कहते हैं ना दिमाग में कुछ भी हो, मेरे साथ ये दो मेहमान आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। आपके सवालों का हमें रहेगा इंतजार। शुरू करते हैं आज का सफर।

0: एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रेनबो हेल्पलाइन में। मैं हूं ज्योतिका और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के दो शानदार अचीवर्स, ऑल इंडिया रैंक 14 सुरभि यादव जी एंड ऑल इंडिया रैंक 32 उत्कर्ष जी। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: सुरभि जी और उत्कर्ष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और आपकी सफलता ना सिर्फ आपके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो सिविल सर्विसेज का सपना देख रहे हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल से। सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यूपीएससी का सपना कब और कैसे शुरू हुआ? क्या कोई ऐसा पल था आपकी लाइफ में जिसने आपको मोटिवेट किया हो, या कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कि आप कुछ तो कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: यूपीएससी का सपना मेरे लिए बहुत पहले से शुरू हुआ था। आई थिंक स्पेशली गर्ल्स के लिए उनकी माँ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, तो मेरे लिए ये मेरी मदर का एक्सपीरियंस एंड हर जर्नी एंड हर डेडिकेशन टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स सर्विसेज हैज़ इंस्पायर्ड मी, और उसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पे पहुँच पाए हूँ।
0: कभी कोई आपके जहन में या लाइफ में कोई ऐसी रुकावट आई हो जिसको आपने सोचा हो कि नहीं, आई विल स्टिल कंटिन्यू डूइंग दिस?
1: बहुत बार आई है, मतलब मेरे लिए तो ये, क्योंकि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और बहुत साल हो गए थे लगातार पढ़ते पढ़ते, एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने से उम्मीद हार जाते हो, बट आप फिर बाउंस बैक करते हो कि नहीं, ये तो करना ही है।
0: बिल्कुल सही, हार कभी नहीं माननी चाहिए। वहीं उत्कर्ष जी, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना ये चाहूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट आज से यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहता है तो पहले 3 महीनों का क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या गाइडेंस देंगे आप हमारे यंगस्टर्स को?
2: मैम, सबसे पहले तो जब भी कोई इसकी तैयारी शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसे पेपर को समझना चाहिए कि पेपर है किस बारे में, उसको थोड़ा सा सिलेबस देखना चाहिए, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, फिर उसको गाइडेंस के लिए बहुत सारे काबिल टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने अलग अलग माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, थोड़ा सा उनको देखना चाहिए और फिर ये समझना चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ पर खड़ा है अपनी तैयारी की शुरुआत में, और उस हिसाब से फिर पहले 3 महीने में सबसे पहले जो बिल्कुल आधार बनाने वाली बात होती है कि सबसे पहले एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं एंड फिर आप बेसिक बुक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के समझते हैं कि आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं और कितना लेवल चाहिए, तो उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप आगे अपनी जर्नी कैसे प्लान करते हैं। तो पहले 3 महीने में पेपर को समझना और बेसिक चीज़ें पढ़ना ही मुझे लगता है सही स्ट्रैटेजी है।
0: राइट, कहते हैं कि जितना स्लो आप इसमें रहेंगे, और कहते हैं ना कि अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ले लिए जाए तो वो कई बार गलत हो जाते हैं। सो आपको 3 महीने में सिर्फ आप पेपर को समझिए, भागिए ना, और धीरे धीरे आई एम श्योर यू विल बी एट द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर भेजिए। 9868107070 इज द नंबर। हो सकता है आज आपका सवाल सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हजारों और एस्पायरेंट्स की भी मदद कर दे।

आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और मैं हूं ज्योतिका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 की ऑल इंडिया रैंक 14 सुरभि यादव जी और ऑल इंडिया रैंक 32 उत्कर्ष जी।

0: बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हमारी यहाँ चल रही है। और सुरभि जी, आपसे बात करके एक बात तो साफ समझ आ रही है कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही प्लानिंग भी मांगती है। हमें अगला सवाल यहाँ पर मिला है, इनका नाम है ललित राणा जी, ये पंजाब से लिखते हैं। नमस्कार, मैं अपनी बेटी को 12th में यूपीएससी की तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मेरे को क्या क्या गाइडेंस चाहिए, क्या प्रोवाइड आप करना चाहेंगे? जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर दूर दूर तक यूपीएससी या एनडीए की कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है, पर ये मेरा सपना है कि मेरी बेटी यूपीएससी या एनडीए क्लियर करे। तो आई विल लीव द क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू।
1: मैम, मुझे लगता है कि इस दौर में जब इंटरनेट का इतना संसाधन हमारे पास है, तो अगर किसी जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं भी हैं, तो एक फ़ोन, एक लैपटॉप और एक स्क्रीन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन माध्यम हैं, जैसे सरकारी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे सनसेट टीवी जैसे चैनल्स हैं, जिन पे बहुत सारे अच्छे शोज़ और अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इनका प्रयोग करके और ऑनलाइन एजुकेशन का प्रयोग करके किसी भी कोने में देश के हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट ये है कि 12th के बाद क्योंकि एनडीए देना होता है, तो आप एनडीए की कोचिंग ले सकते हैं। यूपीएससी के लिए पहले एक बार ग्रेजुएशन में आना और अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को समझना, उस हिसाब से पढ़ना, वो पहले ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर तैयारी के बारे में सोचना ठीक रहेगा।
0: जैसे उत्कर्ष जी ने कहा कि आप ऑफकोर्स ऑन योर टोज आप तैयारी कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके टिप्स पर कुछ कुछ चीज़ें हमारे घर में भी होती हैं, आसपास होती हैं, जहां से हम अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष जी फॉर ब्रिंगिंग अप दिस। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आज बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचकर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, आपने जैसे अभी बताया ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, कोचिंग मटेरियल बहुत होता है, लेकिन अगर कोई बिगिनर आज से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा है, तो आपके हिसाब से मिनिमम और सबसे ज़रूरी रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए और शुरुआत कहाँ से कैसे करें, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि देयर इज सो मच अवेलेबल इन द मार्केट।
1: मैम, मुझे लगता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले बेसिक्स का ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले एक नींव बनानी चाहिए, जिसके लिए एनसीईआरटीज बहुत अच्छा सोर्स है एंड बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज पढ़ना और उसके बाद फिर थोड़ा सा अखबार पढ़ना शुरू कर देना, थोड़ा सा समाचार देखना। इससे हमें थोड़ी सी समझ आता है कि हमारे देश में, दुनिया में चल क्या रहा है और हमें क्या करना है। तो बेस इससे बन जाता है। इसके बाद जैसी जैसी हमारी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से हम सोर्सेज को लिमिट करते हुए, सिलेबस को समझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: ओके, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं सुरभि जी से पूछना चाहूँगी। टाइम मैनेजमेंट को यूपीएससी प्रिपरेशन का बैकबोन कहा जाता है। आप अपना एक नॉर्मल स्टडी डे कैसे प्लान करती थी, अगर आप हमारे साथ यहाँ शेयर करना चाहें कि क्या आप फिक्स्ड टाइम टेबल फॉलो करती थी या फिर कोई डेली टारगेट्स सेट करा करती थी, या स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ साथ कभी कोई जॉब कर रहा होता है, कोई अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहा होता है, तो कैसे मैनेज करा जाए? मतलब कैन यू राइड इन टू बोट्स, और आप मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं।
2: राइट मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली आपको एक तो दिमाग में क्लियर गोल सेट होना चाहिए कि आपको करना ही करना है, एंड देन नंबर ऑफ आवर्स आप डे में फिक्स कर सकते हैं या अपने टाइम अपने डेली रूटीन के हिसाब से भी आप फिक्स कर सकते हैं। हम कुछ लोग हैं जो खाली पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी कैन हैव अ डे जिसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप दिन में 2 घंटे सुबह पढ़ेंगे, फिर यू विल टेक अ ब्रेक, फिर 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर यू विल टेक अ ब्रेक, इस हिसाब से। एंड जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप मे बी वीकडेज पे उतना नहीं कर सकते, बट वीकेंड्स पे आप उसको स्ट्रेच करके अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट सिर्फ उस बारे में नहीं है, टाइम नंबर ऑफ आवर्स इतना मैटर नहीं करते जितना ये मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितना प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं। तो आप गोल और टारगेट सेट करके फिर अपना टाइम मैनेजमेंट करें, तो आई थिंक वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी।
0: बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। साथ ही साथ बीच में ब्रेक लेना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, कि कई बार हम बस घुसे रह जाते हैं एक एक हमारी कोई रीडिंग में या किसी बुक में,

किसी टॉपिक पर, और जब हम घुसे रह जाते हैं तो ना हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ पाता है. सो टेकिंग अ ब्रेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फ्रेंड्स, जैसे हमारी बातचीत अभी चली रही है, अगर आप भी यूपीएससी का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो हमें जरूर भेजिए. 9868107070 इज द नंबर. हो सकता है आज के एक्सपर्ट्स का जवाब आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे. बने रहिए हमारे साथ सिर्फ यहाँ.

0: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन विद मी ज्योतिका, और आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट दो मेहमान हैं, उत्कर्ष जी एंड सुरभि जी, जिनसे हम अपनी बातचीत जारी रख रहे हैं। अभी हमारा अगला सवाल आया है पैंथर तोमर जी का, ये किशनगंज दिल्ली से लिखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स में सीएसईटी के लिए कहाँ से तैयारी करें और मेंस में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कैसे मैनेज किया जाए, और तीसरा ये भी जानना चाहते हैं कि मेंस में आंसर लिखने का एग्जैक्टली क्या सही प्रोसेस होना चाहिए। सो पहला सवाल मैं उत्कर्ष जी आपसे जानना चाहूंगी।
1: मैम, प्रीलिम्स में सीसैट के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सीसैट में तीन सेक्शंस आते हैं, एक मैथ्स का सेक्शन है, एक रीजनिंग है और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये भी एक चीज़ जाननी होगी कि सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें हमें 66.66 मार्क्स लाने होते हैं, तो हमें इसमें सबसे

0: ये आइडेंटिफाई करना जरूरी आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको हम जल्दी सॉल्व करके और श्योरिटी के साथ उनको आंसर कर सकते हैं। जितना जरूरी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कौन से क्वेश्चंस हमें छोड़ने होते हैं इसमें। एंड तैयारी के लिए इसमें मैथ्स के लिए जो टॉपिक लिस्ट होती है, जेनरिक टॉपिक लिस्ट, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने होंगे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी, और उसके साथ में आपको पेपर के एनवायरनमेंट को घर में ही स्टिमुलेट करना होगा।
1: वहीं वो ये भी जानना चाहेंगे कि मेंस में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है. अभी हमने थोड़ी देर पहले वैसे टाइम मैनेजमेंट की बात करी है, लेकिन अगर इस पे थोड़ी सी लाइट आप सुरभि जी और थोड़ी सी और डालना चाहें तो क्या बोलेंगी?
2: मेंस में टाइम मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें. एक तो आपको प्रिपरेशन में ही टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है. तो आप अपना रिवीजन उस हिसाब से सेट कीजिए कि आपके दो रिवीजन हो जाएं. फर्स्ट रिवीजन थोड़ा बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट सेकेंड रिविजन शुड बी क्विक. उसके लिए आपके नोट्स और एफिशेंसी थोड़ी ज़्यादा आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. दूसरा टाइम मैनेजमेंट सेगमेंट मेंस में है, आंसर राइटिंग में, कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है. उसके लिए आई थिंक आपको क्लॉक के साथ बैठना पड़ेगा, एंड विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन की 10 मार्कर क्वेश्चन आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट करने ही करने हैं, विद अ डिजिटल क्लॉक दैट यू टर्न द पेज व्हेन 7 मिनट्स आर ओवर. एंड जो 15 मार्कर्स हैं वो आप 10 और 11 मिनट्स में आप कंप्लीट करें. तो मेन आइडिया इज़ कि आप क्लॉक के साथ बैठिए एंड देन यू कंप्लीट योर पेपर एंड डू टाइम मैनेजमेंट.
1: बाय चांस कभी ऐसा होता है कि क्लॉक मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टाइम एक्सीड कर रहा है, हाउ टू कोप अप विद दैट?
2: आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आपको लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आप उसको एफिशिएंटली कर पाएंगे. इनिशियली नहीं होगा, इनिशियली जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप टाइम एक्सीड करेंगे, बट विद टाइम आप वो हर क्वेश्चन पे क्लॉक रखिए कि हर क्वेश्चन हर पेज का थोड़ा मैनेजमेंट करेंगे तब आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा.
1: राइट. उत्कर्ष जी, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें कि मेंस में आंसर लिखने का ढंग, द राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए?
0: किसी भी मेंस आंसर के तीन मुख्य पहलू होते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसकी मेन बॉडी, और तीसरा उसका कंक्लूजन होता है। हमारा मेन काम जो है वो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है हम उसमें कितना सही और सटीक कंटेंट हम दे पाते हैं। तो हर क्वेश्चन को लिखने के लिए एक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए जो आपका क्वेश्चन से उसको लिंक करे और कंसेप्ट को आगे बढ़ाए। उसके बाद आपको उसकी सब हेडिंग्स में ये बताना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या मांगना चाहते हैं, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे आंसर को समराइज भी कर दे और एक वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करे कि जो भी इशू के बारे में बात हो रही है, जो भी कंसेप्ट है, उसका ओवरऑल जिस्ट क्या है। तो अगर इन सब चीज़ मिला के एक मेंस का एक आंसर बनता है।
1: ऑल राइट. एंड ये पैंथर तोमर जी साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, इनका छोटा सा एक और सवाल आया है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम के लाखों छात्र मेंस और इंटरव्यू देते हैं लेकिन कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या ये माना जाए कि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी जाती है? इस पर आप थोड़ी अगर लाइट डालना चाहें.
0: मुझे लगता है कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो सबको मौका देती है हर मीडियम में, हर रीजनल लैंग्वेजेस में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पेपर देने का। एंड हर स्टेज पे हर लैंग्वेज में आपके पास ये अलाउंस होती है कि आप पेपर लिख सकें। इवन ऑप्शनल में भी काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर होते हैं। तो रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो ये इतना मायने नहीं रखता है। रिसोर्सेज अब हर चीज़ के अवेलेबल हैं, इंटरनेट के दौर में हर चीज़ अब काफ़ी आसानी से एक्सेसिबल है। तो आपका मीडियम कुछ भी हो, आप उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं और फिर आप पेपर क्लियर भी कर सकते हैं।
1: राइट. इससे पहले मैं एक छोटा सा एड ब्रेक लूँ, मैं आपसे जाते जाते ये छोटा सवाल पूछना चाहूँगी. आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया. हम जब तैयारी करते हैं हमारा फ़ोन हमारी हेल्प भी कर सकता है लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन भी बनता है कई बार, उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए? सुरभि जी आप बताएंगे.
2: यस मैम. तो सोशल मीडिया डेफिनेटली एक डिस्ट्रैक्शन भी है एंड एड भी है. तो ये आपको अपने लिए एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनका जो पूरा दिन पढ़ाई किया और रात में एक माइंड फ्रेश करने के लिए या अपडेट लेने के लिए सिर्फ आधे घंटे सोशल मीडिया देख लिया एंड उनका उस लेवल पे सेल्फ कंट्रोल है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, एंड सोशल मीडिया का ट्रेंड ही यही है, मतलब दैट इज हाउ इट इज मेड कि आप बार बार

0: सोशल मीडिया खोलेंगे, बार बार देखेंगे, मल्टीपल टाइम आप रील स्क्रॉल करेंगे, तो इसलिए हमें, अगर आपका वो ट्रेंड या वो पैटर्न बनता जा रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप ऐप्स इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन से, आप फ़ोन दूसरे रूम में रख के फिर पढ़ सकते हैं, ताकि आपको बेसिकली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा।
1: वेरी राइटली सेड. अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, आप हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे कुछ पूछना चाहें, 9868107070 इज द नंबर. छोटा सा एड ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेनबो हेल्पलाइन में। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्कर्ष जी एंड सुरभि जी, एंड हम इनसे यूपीएससी की बातचीत कर रहे हैं। एंड दे आर द अचीवर्स ऑफ 2025 रैंक 14 एंड रैंक 32। आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी, लैंग्वेज पेपर की जब तैयारी की बात आती है तो उसको कैसे किया जाए। कई बार उसको नज़रअंदाज किया जाता है कि ठीक है लैंग्वेज पेपर है, लेकिन उसके बाद ही द जीएस द जनरल स्टडीज की बारी आती है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए।
1: हम लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर ही होते हैं, आपको उसमें मिनिमम मार्क्स लाने हैं। तो एक तो उसकी तैयारी के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं, पिछले 2-3 साल के पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबली उनको क्लियर कर पा रहे हैं तो फिर एज सच आपको तैयारी की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके एंड मेन ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चंस के मार्किंग ज़्यादा है, जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके PYQ ही आई थिंक वो कंफर्टेबली हम क्लियर कर सकते हैं लैंग्वेज पेपर्स।
0: उत्कर्ष जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें?
2: मुझे लगता है जैसा सुरभि ने बताया कि लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसके बारे में हमें सिर्फ उतना ही उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। उसके लिए जो क्वेश्चंस जिनमें मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है, जैसे अगर ट्रांसलेशन हो गया या ऐसे लिखने के लिए आता है, तो हम उस पर फोकस करें एंड हम कोशिश करें कि हम पूरा पेपर टाइम पे फिनिश करके आएँ, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत क्लिष्ट नहीं पूछा जाता है। इट्स जस्ट जेनरिक इंग्लिश एंड जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो अगर उस पर हम स्टिक करते हैं तो ये पेपर आसानी से किया जा सकता है।
0: ऑलराइट, मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी। राजू कुमार बिहार से लिखते हैं कि रिवीजन कैसे करें, और अगर आप

0: इस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर सकें?
1: रिवीजन के लिए आई थिंक बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोसाइटी का कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप पहले तो आपने बेसिक रीडिंग कर ली, उसको थोड़ा कॉन्शियसली याद कर करके रीडिंग की, उसके बाद आप उस टॉपिक को बंद कर दीजिए एंड रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपको उस टॉपिक में क्या क्या याद आता है। फिर मे बी उसको अगर वर्बली नहीं तो आप उसको लिख के छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक्स याद आ रहे हैं। देन फिर आप अपने वापस नोट्स पर जाइए, फिर उसको टैली कीजिए कि आपको कितनी चीज़ याद है और कितनी चीज़ आपको अभी भी मिसिंग है। तो जो चीज़ मिसिंग है उसको फिर से कॉन्शियसली याद कीजिए एंड देन अगेन रिवाइज दैट। आई थिंक दैट वुड बी अ स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड मोस्टली।
0: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी रोहित यादव जी का, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से लिखते हैं। हाउ टू मैनेज पर्सनल लाइफ पढ़ाई के बीच में, क्योंकि वो शायद अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एंड उनको लगता है वो स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और सिंस वो मराठी बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या उन्हें इंग्लिश अपनी लैंग्वेज चॉइस ऑफ लैंग्वेज पिक करनी चाहिए जो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है? इफ यू कुड गाइड हिम अ लिटिल बिट।
2: मैम पहले सवाल का अगर जवाब दूं कि लाइफ आपकी हमेशा प्रिपरेशन के साथ ही चलेगी, इट डज नॉट वर्क इन साइलोज कि आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि पर्सनल लाइफ अलग हो और आप पढ़ाई अलग से करें। आपको दोनों के लिए ही एक दूसरी जगह से समय निकालना पड़ेगा। जब आप पढ़ते हैं आपको अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स भी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसको डील करते हैं। आप प्रायोरिटाइज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ध्यान दें। और रही बात पर्सनल लाइफ में अगर बाहर जाने की या दोस्तों से मिलने की, तो उसका भी एक राइट बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है कि अगर आप 5 दिन पढ़ते हैं तो आप 1 दिन बाहर भी जा सकते हैं। ये 24 घंटे पढ़ने वाली पढ़ाई नहीं है, इट्स अ मैराथन। एंड दूसरा प्रश्न है मराठी मीडियम का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में स्विच ही करें। जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, वो मीडियम इस परीक्षा के लिए बेस्ट रहेगा।
0: थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट कि 24 घंटे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। सुरभि जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि UPSC का एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त हर साल कई स्टूडेंट्स छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसका बाद में नुकसान उनको उठाना पड़ता है। आपके हिसाब से फॉर्म भरते वक्त किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको एकदम अवॉइड करना चाहिए बच्चों को?
1: यस मैम, तो जब UPSC का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले, एंड वो नोटिफिकेशन बहुत ही डिटेल्ड होता है, उस नोटिफिकेशन में छोटी छोटी सब डिटेल्स लिखी होती हैं, तो सभी परीक्षार्थी जो भी फॉर्म भर रहे हैं सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हर एक चीज़, अगर आप उस पर श्योर हैं तब आप वो डिटेल्स भरें, लेकिन आपको कहीं पर भी डाउट लगता है कि इसमें प्रायोरिटी देनी है या क्या भरना है या क्या नहीं भरना है, मेनली अब तो क्योंकि बहुत डिटेल पूछने लगे हैं, पेरेंट्स की डिटेल भी है, सब चीज़ है, तो आप अगर पेरेंट्स की डिटेल है तो आप पेरेंट्स से पूछ के उस सबको ठीक से भरें। बहुत बार सर्टिफिकेट्स में इशू आते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट्स है, तो ये सब चीज़ का लेटर स्टेजेस में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप वो सर्टिफिकेट्स का पहले कंफर्मेशन कर लें। फिर UPSC के हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्वेरी नहीं सॉल्व हो रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देन फिर आप उस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरिए।
0: राइट उत्कर्ष जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत से कैंडिडेट्स प्रीलिम्स पर तो फोकस करते ही करते हैं, लेकिन जो बाकी हमारी राउंड्स होते हैं उन पर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट शुड बी द राइट डायरेक्शन प्रोसेस और कैसे एक एस्पायरेंट को आगे बढ़ना चाहिए?
2: मैम क्योंकि इस परीक्षा में 3 स्टेजेस हैं, तो हमारा किसी भी स्टूडेंट का मेन गोल होता है परीक्षा क्लियर करना, ना कि एक एक स्टेज पे ध्यान देना। तो हमारी पूरी प्रिपरेशन है वो इट शुड बी इंटीग्रेटेड, कि हमें तीनों स्टेजेस को साथ में लेके चलना चाहिए। अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वही सेम टॉपिक्स, वही सेम सब्जेक्ट्स तीनों स्टेजेस में अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हम जो भी टॉपिक पढ़ें उसको डिटेल में पढ़ें, हम अच्छे से समझ के पढ़ें कि अगर उससे रिलेटेड हमें

0: चाहे एमसीक्यू आंसर करना पड़े या 2 पेज का आंसर लिखना पड़े या फिर अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बताना पड़े तो हम क्लियर हों। एंड इसके अलावा सिर्फ प्री क्लियर करने से या सिर्फ मेंस क्लियर करने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो हमें हर स्टेज के बाद वी शुड ट्राई टू लेवल अप एंड वी शुड डू द थिंग्स दैट वे।
1: थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आज हमें जो जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजिए। 9868107070 इज द नंबर। हो सकता है आज का एक जवाब आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दे। बने रहिए हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन में।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और आज हमारी बातचीत हो रही है सुरभि जी और उत्कर्ष जी के साथ। टॉपिक हमारा है यूपीएससी प्रिपरेशन एंड अगला सवाल हमें पैंथर जी ने एक बार फिर से भेजा है। पूछना चाहते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन का सही तरीका क्या है। सुरभि जी आप इसको आंसर करना चाहेंगे?
1: यस मैम, यूपीएससी में इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए। उसमें मेन आप अपना नाम बता सकते हैं, उसके बाद आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दीजिए, आपने कहाँ से स्कूलिंग कहाँ से की है और कॉलेज में आपका क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, मे बी आप वो बता सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ से आते हैं, वो स्टेट सिटी, एंड आई थिंक दैट शुड बी इट। और अगर आप चाहें तो आप अपनी हॉबी भी ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं, बट आपका इंट्रोडक्शन इतना ही लिमिटेड होना चाहिए।
0: राइट। और यूपीएससी के जब इंटरव्यू में हम जाते हैं, जो बोर्ड हमारे सामने होता है, जब घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं?
1: बोर्ड के सामने जाने से पहले घबराहट होना, नर्वसनेस होना बहुत ही नेचुरल और आम बात है, क्योंकि ये हमारा लाइफ का बहुत ही टर्निंग मोमेंट होता है। तो उसके लिए आप एक तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं जाने से पहले। इफ यू टेक 3 डीप ब्रेथ्स, वो ऐसे टेक्निक सिखाई जाती है, तो इट हेल्प्स यू काम डाउन। दूसरा, आप मॉक्स दे सकते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे बोर्ड होगा, कैसे पैनल होंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एक वो तरीका पता चल जाता है, तो आपको अनसर्टेनिटी नहीं रहती है। तो आई थिंक ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं घबराहट कम करने।
0: थैंक यू सुरभि जी। उत्कर्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्पेशली अबाउट द जीएस पेपर 4, यानी एथिक्स के बारे में, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को तो बहुत इम्पोर्टेंस दी ही जाती है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन दूसरे पेपर से काफ़ी अलग होती है। आपने एथिक्स की जब तैयारी करी तो कैसे करी, और आप जो आपके फेलो लिसनर्स आपको अभी सुन रहे हैं, यंगस्टर्स, उनको कुछ क्या गाइड करना चाहेंगे?
2: मैम, एथिक्स पेपर हमें ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक ऐसा पेपर नहीं जिसमें आपको बस पेजेस भरने होते हैं, आपको उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट से भी एग्जांपल्स डालने होते हैं। आपको सबसे पहले उसके हर हेडिंग को, उसकी हर सब हेडिंग को समझना होगा, जैसे एथिक्स एंड इंटेग्रिटी हो गया, या फिर सिविल सर्विसेज हो गया, या फिर प्रोबिटी एक एग्जाम्पल हो गया। उसको आपको सबसे पहले समझना होगा कि उसका आपके सर्विस में क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एथिक्स का सीधा लिंकेज होता है कि हम जिस भी सर्विस में जा रहे हैं या फिर एक डेली लाइफ में हम खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं। एक बार जब हम उन शब्दों का मतलब समझ जाते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि उनसे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या इश्यूज हैं, फिर हम उनसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक को आप उठाएं और उसके बाद उसको आप बेसिक लेवल पे पढ़ें जो भी सोर्सेज हैं, उसके बाद उसको एग्जाम्पल्स के साथ एनरिच करें और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें।
0: ऑलराइट। सुरभि जी, यूपीएससी मेंस का जो ऐसे पेपर होता है काफ़ी स्कोरिंग माना जाता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उसकी तैयारी कैसे शुरू करें। आपने ऐसे के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, एक तो आप हमें प्लीज़ ये बताइएगा, और एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: राइट मैम, ऐसे पेपर एक बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, एंड आई थिंक थोड़े से एफर्ट से आप उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन ला सकते हैं अपने मार्क्स में। एसए की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर का एक एसए का टॉपिक उठाइए और उसको लिखिए, बिना किसी प्री कंसीव नोशन के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, आप जैसे उसको नेचुरली लिख सकते हैं आप उसको लिखिए, 8-9 पेज जो भी है। फिर आप उसको रिव्यू कराइए किसी से, आप अपने 2-4 दोस्तों को दीजिए उसको, एंड वो जिस हिसाब से आपको रिव्यू देते हैं, आप खुद अपने एसे को कई बार पढ़िए, एंड देन उसको नरिश कीजिए। फिर ऐसे फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम जाते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है ऐसे लिखने में। पहला है कि एक एनेक्डोट अच्छा सा आप लिख दें ऐसे जो स्टार्ट करें, ताकि वो कैची रहे एग्जामिनर के लिए। देन आप उसमें करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हैं, जो आप हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल लिखने, तो आप करंट अफेयर्स से आप उसको पिकअप कर सकते हैं। देन एक अप्रोच होता है ऐसे लिखने के लिए कि आप वो आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है आप उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, देन आप उसके एग्जाम्पल से उसको सब्सटैंशिएट करें, फिर आप उसकी एंटीथीसिस भी लिखिए।

0: कि शायद जो ये स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसके विरोध में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी चाहिए, तो आप वो लिखिए एंड उसके बाद एक अच्छा सा डिटेल थोड़ा कंक्लूजन करिए। लास्ट में उसको रश मत कीजिए अपने एसे को, थोड़ा डिटेल अच्छे से बिल्ड अप करके उसको कंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन भी आप अपने एनेक्डोट से भी लिंक कर सकते हैं ताकि आपका एसे थोड़ा होलिस्टिक और कवर्ड लगे।
1: थैंक यू सो मच. दिस इज़ रियली अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस. उत्कर्ष जी, टाइम बहुत कम बचा है लेकिन मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं. मैं आपसे फटाफट जानना चाहूँगी कि अब एआई का ज़माना है और हर जगह एआई एआई एआई, लेकिन आज जो यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको क्या एआई हेल्प कर सकती है और कैसे कर सकती है? आपके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स को, मतलब इसके इस्तेमाल किस तरह से करें और ओरिजिनल थिंकिंग और आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी कितनी मजबूत हो सकती हैं? या आप मतलब मैं सीधी भाषा में जाना चाहूँ तो हाउ कैन एआई बी हेल्पफुल?
2: मैम, एआई जैसे नई तकनीकी है, अब एआई का दौर आ गया है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट. किसी भी प्रिपरेशन में सबसे पहले जो एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि आप अपना एक कंटेंट तैयार करते हैं, तो उस कंटेंट को तैयार करने में जो आपका बल्कि काम होता है, जैसे बहुत सारी पीडीएफ्स होती हैं आपके पास, बहुत सारी कंपाइलेशंस होती हैं, आप एआई का यूज़ करके उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप एआई को यूज़ करके उस बड़ी पीडीएफ को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि आपके सिलेबस की हेडिंग्स के हिसाब से हो जाए. इसके बाद आप एआई से इवन आंसर राइटिंग इवेल्युएट करवा सकते हैं. आप ये चेक कर सकते हैं कि एआई आपका जो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें कि उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसके बाद आप उसको रिवाइज करने में हेल्प कर सकते हैं. आप अपने लिए क्विज बनवा सकते हैं उससे. एंड लास्ट में जैसे इंटरव्यू एक स्टेज है, तो उसके लिए आप अपने खुद की डैफ से भी क्वेश्चनेयर बनवा सकते हैं. तो एआई कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बट हैविंग सेड दैट, एक बैलेंस हमें ये हमेशा रखना पड़ेगा कि हम एआई पे ओवर रिलायंस ना करें. हम पहले अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करें और फिर जहाँ हमें ज़रूरत पड़े हम सिर्फ वहीं पर एआई यूज़ करें.
1: थैंक यू सो मच. और आप ही से मैं एक और सवाल जानना चाहूँगी कि सिलेबस ऑफ कोर्स बहुत वास्ट होता है, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें कभी कभार समझ नहीं आता, बट इफ़ यू कुड गिव अ लिटिल लाइट ऑन द टॉपिक जहाँ GS 1, 2, 3 और 4 पेपर्स में कभी बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहले 2 करें पहले 4 करें, इफ़ यू कुड गाइड व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस एंड हाउ टू गो अबाउट इट, आप दोनों में से जो इसका आंसर देना चाहें.
2: मैम, अंत में जाके हमें पेपर तो चारों ही लिखने हैं, तो देर इज नो राइट पाथ. इट जस्ट डिपेंड्स कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप किसी ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो आप कंफर्टेबल हों. तो अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में, सपोज आप पॉलिटी में कंफर्टेबल हैं, तो आप GS 2 से शुरू करें. उससे आप इस प्रिपरेशन में ईज इन टू हो जाएंगे एंड आपको थोड़ी आदत लग जाएगी. उसके बाद आप फिर टफ टॉपिक्स में भी जा सकते हैं.
1: राइट. और जाते जाते मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगी, जब मेंस हो जाते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो इन सब राउंड्स की कैसे तैयारी करी जाए?
0: अलग अलग स्टेज पे आपका अलग अलग टाइप का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. प्रीलिम्स के टाइम पे मेनली MCQ आता है, क्योंकि वो तो वो आप टेस्ट कर रहे हैं. उस टाइम पे आपकी सोल फोकस होना चाहिए कि आप कैसे मैक्सिमम MCQ सॉल्व कर सकते हैं, एंड वही जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना, वो आपकी स्ट्रैटेजी है. उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स होता है और मेंस है, उसके बीच में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. आप एक एक पेपर उठाइए, सिलेबस और सब कुछ मोस्टली हमने पहले ही किया होता है. इस टाइम पे मेन फोकस हमारा वो रिविजन याद करना एंड टेस्ट लिखना, वो आपको इस फेज में रिग्रेसली करना होता है. मेंस के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, बिकॉज फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, तो यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम योर स्टडीज में भी, एंड उसके बाद वापस इंटरव्यू स्टेज में फुल मोड से. तो आप, क्योंकि आप अनसर्टेन होते हैं, आपको नहीं पता होता रिजल्ट किस तरफ जाएगा, तो लेकिन आप कुछ कुछ बुक पढ़ने लगिए, कुछ अपना आप, क्योंकि डैफ आप पहले से फिल कर सकते हैं, तो आप अपनी डैफ की कुछ डिटेल्स हैं, जो हॉबीज़ हैं उन पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा उनमें डीपली जाके रीड करना या फिर उनको प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं. एंड वंस आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, तो फुल मोड आप उसमें इंटरव्यू प्रैक्टिस में जाइए विद गिविंग मॉक्स एंड ऑल.
1: थैंक यू सो मच. उत्कर्ष जी, क्विकली इफ यू वुड लाइक टू ऐड कि हमें इंटरव्यू के लिए किस माइंडसेट से जाना चाहिए.
2: मैम, मुझे बस इतना लगता है कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी, एंड अगर इफ यू आर ट्रू टू योर पर्सन

0: Give your 100% and believe on yourself.
1: राइट, एडिंग टू दिस, फोकस ऑन योर सेल्फ, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं पिछले वाले अटेम्प्ट में उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए कि क्या गलतियाँ हुई मुझ पे, और उस पर काम कीजिए. हर बार आपको उस चीज़ पे काम करना होगा, एंड थोड़ा कंसिस्टेंट रह के प्लस अपने क्लोज्ड वंस को अपने पास रखिए.
2: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस उत्कर्ष जी एंड सुरभि जी. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स जो आज हमें सुन रहे थे उनके लिए भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही वैल्यूएबल रही होगी. थैंक यू सो मच. मैं ज्योतिका लेती हूँ अब आपसे इजाजत. आप सुन रहे थे रेनबो हेल्पलाइन. स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए FM रेनबो.

आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली NCR में 5 परिसरों पर छापेमारी। सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए हैं। ईरान ने हॉर्मुजगान प्रांत और महाशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके चलते वैश्विक तेल की कीमतों में 3% से अधिक की उछाल आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य में छह जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। और स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अगला मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की दोपहर का वो खास प्रोग्राम जो जुड़ा है आपकी जिंदगी के सबसे गहन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सबसे

सबसे ज्यादा प्यारे रिश्ते से, एंड ऑब्वियसली इसका नाम है हम कदम जी। आप ही के हम सफर के बारे में होती है बात और आपके इस खूबसूरत सफर के हम सफर हम भी बनते हैं थोड़ी सी देर के लिए। सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। कार्यक्रम की शुरुआत दो बहुत ही खूबसूरत आवाजों के साथ।

कितनी खूबसूरत बातें कर रहे थे ना अभी आपने सुनी कविता कृष्ण मूर्ति और अभिजीत की बहुत ही खूबसूरत आवाज से ग्रहण मूवी से प्ले किया मैंने ये गाना आप सभी के लिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत आज के इस हम कदम की शुरुआत की मैंने इससे पता है क्यों क्योंकि ये गाने के जो वर्ड्स है ना बहुत ही खूबसूरत है और हर कोई चाहता है कि आपका हम सफर जो है ना आपके लिए कुछ इसी तरह की बातें कहें एंड ऑब्वियसली वाई नॉट भाई हम पूरी तरह डिजर्व जो करते हैं लेकिन मजे की बात है कि जितनी तरह की बातें ये जो होता है एक पोएटिक लैंग्वेज जो होती है ये पोएटिक लैंग्वेज है ना समय के साथ बदलती चली जाती है हालांकि शुरुआत में सब यही कहते हैं चांद सितारे तोड़ लाना पाँव में कांटा तक ना चुभने देना वगैरह वगैरह जैसी बहुत सी बातें जो अभी आपने इस गाने में भी सुनी। मजे की बात कि ये प्रॉमिसेस बहुत सारे किए जाते हैं शुरुआत में किसी भी रिश्ते की शुरुआत में ऑब्वियसली ऐसा होता ही है लेकिन क्या ये प्रॉमिसेस पूरे होते हैं भाई इससे पहले कि आप में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं ना कि नहीं जी बिल्कुल नहीं होता है रियलिटी तो बहुत फर्क होती है मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एक्चुअली में रियलिटी जो होती है ना माना कि फर्क होती है मगर इतनी फर्क नहीं होती है कि आप उसे बिल्कुल 180 डिग्री घुमा दें क्योंकि चीजों की ना परिभाषा लगातार बदलती चली जाती है। पाँव में कांटा चुभने ना देना वाली बात को हम इस चीज से शामिल कर सकते हैं कि जब भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो ऐसे में आपका साथ निभाना और कोशिश ये करना कि आपकी परेशानी जितनी हो सके उतनी दूर हो जाए। देखा जाए तो कुल मिला के ना बात वही आती है परिभाषाएं बदलती चली जाती हैं ना केवल रिश्ते की ना केवल इन सारे वादों की बल्कि आप दोनों की भी एक दूसरे के साथ जो परिभाषा होती है वो चेंज हो जाती है। आफ्टरऑल ये रिश्ता ही ऐसा है क्योंकि इश्क से शुरुआत होकर मोहब्बत तक बात पहुँचती है और अंत में ख़त्म जो होती है ना वो दोस्ती पर होती है। इसी रिश्ते के बारे में बात करते हैं हम और इसीलिए किया हमने अपना पूरा एक ये प्रोग्राम जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार 2 से 3 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। ये प्रोग्राम है हम कदम और मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से गाने और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये जरूर पसंद आ रहे हैं। अब कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाज के बाद मैं लेकर आई हूँ आपके लिए श्रेया घोषाल की बहुत ही अमेजिंग सी आवाज। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

रोहित चौहान और श्रेया घोषाल की बहुत ही अमेजिंग आवाजों में मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना अभी आपने सुना। कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं ना, लेकिन पॉइंट पे आ जाते हैं ना बाद में हम लोग, बिल्कुल ही बिल्कुल हर तरह से, मतलब सारी बातें एक तरफ और उसके बाद में सीधी बातें होती है। पॉइंट क्या है, कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, रिश्ते की खूबसूरती यही है कि वो लगातार बदलता है। और मैं आपको एक बार याद दिला दूं, हम कदम सुन रहे हैं आप मेरे यानी स्वाति के साथ ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। आपके हम सफर के बारे में बात कर रही हूं, आपकी जिंदगी का ये सबसे गहरा सबसे खूबसूरत रिश्ता जो होता है उसके बारे में मैं बात कर रही हूं। एंड ऑब्वियसली हर रोज जब हम खुद बदलते हैं तो ये रिश्ता भी हर रोज बदलता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बातें भी जो है ना लगातार बदल जाती हैं। जहां शुरुआत मैंने आपको सुनाया था कि किस तरह से होती है ना खूबसूरत पोएट्री से, शेरो शायरी से, और बड़ी अमेजिंग वाली उपमाएं जो हम दे देते हैं, उन सब चीजों से शुरुआत होती है, उसके बाद हम पॉइंट पे आ जाते हैं। लेकिन मजे की बात है कि ये बातचीत जो है ना उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो एक जिसको हम कहते हैं ना अनकही बातें भी जो होती हैं वो भी हम समझना शुरू हो जाते हैं, साइलेंस तक पहुंचते हैं। और वो साइलेंस, मैं यहां पे कंफर्टेबल साइलेंस की बात कर रही हूं, यहां पे मैं उस अनकंफर्टेबल साइलेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं जो इसलिए होता है कि हमें बात नहीं करनी है एक दूसरे से। ये उस साइलेंस की बात हो रही है जहां पर आप बिना कहे भी बहुत सी बातें जो है ना समझ जाते हैं। जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अक्सर मैं इसे कहती हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सप्रेशन की भी अपनी एक खूबसूरती होती है और हर एक्सप्रेशन की जो अपनी एक इंपॉर्टेंस है ना वो भी लगातार बनी रहती है। और अपने साइलेंस को समझते तो रहें लेकिन उसके साथ साथ अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को और एक दूसरे के लिए अच्छी बातों को ना लगातार कहते भी रहें, ये भी बहुत जरूरी होता है और खासतौर पे आपके शादीशुदा रिश्ते में। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड नॉट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, ये एक तरह से देखा जाए ना तो कुछ इसी बारे में हमने बात की। हमारे गाने भी आज इसी से जुड़े रहे, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। मैंने आखिरी गाना जो चुना है ना आज के प्रोग्राम का वो भी बड़े खूबसूरत है, तुलसी कुमार और केके की आवाज में मैं प्ले करने जा रही हूं आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम आशियाना यानी कि हम कदम का समय था आज बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी, श्रोताओं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
0: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
0: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
0: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो। अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गए।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आरी।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।

0: উভতি আহিব ঠিক ঠাক জানকারী দিবি আর ভাল সে পুরা মদত করিবি
1: আপনি খান লাগা মদত বিশি দরকার আছে আমি খান লাগা সেন্সাস আমি খান লাগা ডেভেলপমেন্ট
0: আপনি শুনিছে নাই নাগাল্যান্ডের সেন্সাস 2027 নিমিত্তে ঘর গিনতি কাম শুরু হয়েছে এটু জানকারী খান লবলে আছে
1: ঘরটি থাকা দরকারী সুবিধা খান খাবলে পানি এলপিজি ইলেকট্রিসিটি স্যানিটেশন আর বাকি দরকারী জিনিস খান লাগা ডিটেলস লব
0: কিতিয়া সেন্সাস অফিস মানুষন আপনার ঘরটি আহিব ঠিকঠাক জানকারী দিবি আর ভাল সে পুরা মদত করিবি
1: আপনি খান লাগা মদত বেশি দরকার আছে আমি খান লাগা সেন্সাস আমি খান লাগা ডেভেলপমেন্ট
2: Welcome back, my dear friends. Aram Khan Lagudai, Poyla caller Thakki Ase. Hello.
3: Hello.
2: Hello, who is calling?
3: Ji, Prem Singh Sisodia bol raha hu. Gram Bachora, Tehsil Nagar Jila Ujjain se.
2: Okay, Prem Singh Ji, program mein swagat hai. Aur pata hai aaj ka din kaisa raha?
3: Ji, din to kaafi acha raha. Aur mera first call lag gaya, to mujhe aur bhi khushi ho rahi hai. Kaafi acha lag raha hai.
2: Kya baat hai, kya baat hai. Aur kismat kitna acha hai aaj ke liye.
3: हाँ जी बिल्कुल अभी आपको बताऊं मैं फिल्म का नाम है राज
2: राज
3: हाँ
2: ठीक है राज
3: तो गाने के बोले इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे
2: राज का मूवी शायद मेरा म्यूजिक बैंक में नहीं है
3: जी अभी आपको बताऊं
2: जी
3: भगवान सिंह जी से हमारी बात हुई थी उन्होंने बोला कि अभी कोलमा पे कार्यक्रम आएगा वहां पे कॉल लगाना है हमें जी हाँ हम सोता हूँ मतलब पहले से ऐसा हो जाता है होड़ लग जाती है कि पहला कॉल किसका लगेगा किस किस का सोता का लगेगा किसी का नहीं लगेगा
2: जी जी जी
3: जी
2: तो
3: जी जी का
2: प्रेम सिंह जी आपका जो राज का मूवी का आप रिक्वेस्ट किया वो मेरा म्यूजिक बैंक में नहीं है तो कोई और दूसरा फिल्म का होगा
3: बरसात फिल्म का मिल जाएगा बरसात के दिन आए
2: बरसात मैं देखता हूँ
3: जी
2: और बरसात का दिन आ रहा मतलब टाइटल सॉन्ग बताइए
3: बरसात के दिन हाँ टाइटल सॉन्ग बरसात हमारे यहाँ पे हो रही है काफी अच्छी
2: जी
3: जी आपको बताऊँ हर जगह पानी भर गया है
2: हाँ
3: सोयाबीन की फसल लगाई है सभी किसानों ने
2: ठीक है
3: हाँ जी
2: हाँ मिला है और पता ही किस किस का नाम लेना चाहूंगा
3: भगवान सिंह परमार के सी सिंह राजपूत भोपाल से सुनील झा बाया बेटी सीहोर से है रमेश टेलर रमेश पात्रो और भैको मुंडा विमल अमल भस्मकारी और आशुतोष अविना संगीता जी ये सभी लोग सुन रहे हैं और हाँ हमारे एक छोटी दोस्त श्रोता आप भी पहचानते हो उन्हें हमारे तनुश्री महाराष्ट्र से जी काफी अच्छी बातें करते हो अभी से इतने स्मार्ट है बड़े होके बहुत ही अच्छे मतलब आप इंसान बनेंगे हो
2: राइट
3: जी और हम सब लोगों की उनके साथ में दुआ है
2: ठीक है तो थैंक यू सो मच प्रेम सिंह जी आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग
3: जी थैंक यू सो मच
2: यू आर वेलकम बाय তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমি খান লাগা রেগুলার লিসনার থাকি আছে আর রেগুলার কলার ভি থাকি আছে প্রেম সিং সসুদিয়া উজ্জয়ন মধ্যপ্রদেশ পরা তাই রিকুয়েস্ট করা লাগা গীত আমি খান পয়লা শুনি হব কুমার সানু আর অলকা যাকনিক অবস্থায় বরসাত ফিল্মরা মিউজিক দিছে নাতিমার শ্রাবণ লিরিক্স সমীর আর তাই নাম লওয়া সবকে ইটু গীত ডেডিকেট করে দিয়েছে

0: मैं रमेश प्रजापति ग्राम बाया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
1: रमेश जी प्रोग्राम में स्वागत है। और बताइए आज कैसे दिन रहा?
0: बढ़िया रहा, मतलब ठंडा है आज मौसम, पानी तो नहीं गिर रहा लेकिन ठंडक हो गई है, मतलब पानी तो बहुत कम गिरा है, अभी बारिश नहीं लगा सही से हमारे यहाँ।
1: लेकिन ठंडा का मतलब बहुत बढ़िया खबर है।
0: हाँ ठंडा ठंडा है, मतलब बादल है, धूप नहीं निकली है तो बढ़िया ठंडा है।
1: क्या बात है। तो बताइए इसका साथ कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
0: फिल्म का नाम है हवस।
1: फिल्म का नाम कैसे पता ये?
0: हवस हवस
1: हवस
0: जी।
1: मैं देखता हूँ, मैं ढूँ रहा हूँ, शायद ये वाला फिल्म मेरा म्यूजिक बैंक में नहीं है।
0: सुहाग
1: सुहाग मैं देखता हूँ। सुहाग से सिर्फ एक गीत है, आए यार सुन।
0: हे यार सुन यारी मेरी,
1: ये होगा
0: है ना?
1: हाँ
0: ठीक ठीक यही सुना लो।
1: ओके, और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
0: सबसे पहला तो आपका
1: थैंक यू।
0: ये भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोजी दी है, केसी सिंह राजपूत है, मंगलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, धर्मवीर लोकल वर्मा है, उज्जैन से आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है, विजयपुरम से पूनम जी है, कानपुर से अविनाश जी है, राकेश जी है, शिमला से शिवन और विदिशा से, और बिमल भाई है, अमल भाई है, गोल्डी जी है, और रमेश पात्रे जी है, तो भाई को मुंडा जी है, तो रक्कू विनय मेथा जी है, और हमारी सबसे अच्छी सबसे प्यारी तनु श्री बिटिया जी को ये गाना सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके ठीक है। और कैसा रहा आज का सेल?
0: बढ़िया है सर जी, चल रहा है गुजारा।
1: क्या बात है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच रमेश जी, आपसे बार बार अच्छा लगा। और सुनो आपका
0: जी जी
1: सॉन्ग
0: जी।
1: ओके बाय,
0: धन्यवाद। ओके
1: वेलकम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमी खलनागर रेगुलर लिसनर था कि ऐसे रमेश प्रजापति मध्य प्रदेश पर ताई रिक्वेस्ट को लगा गीत अमी खान हुनी अब सुहाग फिल्म रा मोहम्मद रफी आशा भोसली शैलेंद्र सिंह लगा वास्ते म्यूजिक दिस लक्ष्मी कान प्यारे लाल लिरिक्स अनंत बक्सी और ताई नाम लॉस सबके इतुकी डेडिकेट कर दिए से।

0: Well, my dear friends, I'm Nikan Sobi, Agajwane Kuhi, my family, Chaguban, 103, Makers Day Live Phone In Program, Huniyase, and we have the next caller with us.
1: Hello, Sarji, Namaskar.
0: Hello, Namaskar. Who is calling?
1: Giram Hirapur, Jila Sihor, Madhya Pradesh, se Bhagwan Singh Parmar, bol raha hu, sir.
0: Okay, Bhagwan Singh Ji, program mein swagat hai, aur pataye, kun sa wala geet suna jaunga aaj?
1: Sir, film ka naam hai, Mera Saya.
0: Mera Saya.
1: Ji.
0: मेरा साया से सिर्फ एक गाना है.
1: कौन सा है? कौन
0: मेरा
1: सा?
0: साया साथ लता मंगेशकर.
1: नहीं सर, ये नहीं सर, मुझे ये चाहिए था, नैनों में बदरा छाए.
0: तो पता ये दूसरा फिल्म
1: है, बड़े मियां छोटे मियां का.
0: हाँ, बड़े मियां छोटे मियां
1: जी, इसमें गीत है मेरे प्यार का रस जरा चखना.
0: ओके, मैं सुन रहा हूँ. गीत का नाम बताइए.
1: मेरे प्यार का रस जरा चखना, ऐसा कुछ है सर.
0: मेरा ये बारे मिया छुती मिया फिल्म से सिर्फ तीन तो खाना है.
1: जी जी सर, बताइए.
0: मस्त मलंग छुम एक है
1: जी.
0: रंग इश्क का रिमिक्स वर्जन एक है, और रंग इश्क का विशाल मिश्रा का एक है. कौन सा वाला हो?
1: अरे जीज वाला सुना दीजिए, जो भी हो.
0: अच्छा, मस्त मलंग सुना दो.
1: जी सर.
0: ओके, और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा.
1: जी सर, शिवा लोहट जी है, तनुश्री बिटिया है, अंजलि भस्मतारी, रमेश पात्रे जी, अमल भस्मतारी है, विमल भस्मतारी है, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी है, राकेश जी है, आशुतोष जी है, अविनाश जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसी सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकान मुंडा जी, गंगाधर सावनकर जी है, और हमारे ग्रुप में से योगेश जांगड़े जी है, श्रीपाल गोयल जी है, और जगदीश राय गर्ग जी, लोकेन वर्मा जी, करणवीर पाल जी है, और सुनील झा जी है, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी, इन सबके साथ सर.
0: ओके, थैंक यू सो मच. प्रेम सिंह जी,
1: भगवान सिंह जी,
0: थैंक यू सो मच. आपसे बात हुआ, अच्छा लगा, और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग.
1: धन्यवाद सर.
0: ओके, यू वेलकम, बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान सिंह परमार ताई रिक्वेस्ट को लगा गीत हमें कान हुनी हबो परे मिया छुती मिया फिल्म रा अरिजित सिंह विशाल मिश्रा और निकिता कांदी अवस्थे म्यूजिक दिसे विशाल मिश्रा लिरिक्स इरशाद कमील और ताई नाम लो सो के इटुके डेडिकेट कर दिए से होने के ना एंजॉय करबी.

0: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
1: Hello, namaskar.
0: Hello, namaskar, Ramesh Rakesh ji.
1: जी राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुना जाऊंगा।
1: फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन।
0: ओके हीरो नंबर वन और कौन सा वाला गीत?
1: उसमें एक गाना है हम तुम पे मरते हैं।
0: हम तुम पे मरते हैं। यस है
1: जी जी।
0: और
1: तो डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी बताइए।
1: सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: पूरण वर्मा, अविनाश तेली, भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति और महाराष्ट्र पिटारा से है तनुश्री और ये आशुतोष देवनाथ और विमल विमल भस्माचार्य, रमेश पात्रे और रुको मिला मीठा और मीठा सब के लिए गाना डेडिकेट करेगा।
0: ओके ओके ठीक है। थैंक यू सो मच राकेश जी फोन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: जी जी धन्यवाद।
0: यू आर वेलकम। तो माय डियर फ्रेंड्स रागेश फ्रॉम शिमला मिखन लगा रेगुलर लिसनर थकी ऐसे ताई रिक्वेस्ट को लगा गीता मिखन न हुनी अबो हीरो नंबर वन फिल्म रा विनोद राठौर और सदना सरकम अवस्थे म्यूजिक दिस आनंद मिलिंद लिरिक्स समीर होने के ना एंजॉय कर भी और ताई नाम लो सब के इतु गीत दिदिकेट कर दिए से।

0: छूट जाना है। 15 साल भारत के लिए खेले, वो वापस नहीं आएगा। वो सेटिस्फेक्शन अलग ही है जब तुम एक तेज गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना, जब बॉल बीच में लगता है और कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी आप काम कर लो, जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी पैसे कमा लो, वो वापस नहीं आएगा।
1: से विदा लेने का कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
9: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra.

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।